ये दुनिया एक मेला है जहाँ इंसान मिलते हैं, गरीबों के दुआओं से मगर भगवान मिलते हैं।

0: आखिरी काम अपनी हयात में ना कर पाई तो मरने के बाद भी पछताओगे। मुझे ये अपने पति के लिए करना होगा।
1: सत्या,

0: Wollust! Die Volunte!
1: Watch my biggest blockbusters online, anytime, anywhere on erosnow.com.
2: सलमान खान की कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए। अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

हीरा मंडी का दस्तूर है कि कोई तवायफ मुजरा खत्म करने से पहले महफिल नहीं छोड़ती। जाओ मुजरा पूरा करो, जाओ।